0: गराउँदछौ।
1: सम्पर्क सुपथ मेडिकल हल वीरेन्द्र नगर छ हुलाक नजिक सुर्खेत। फोन 083-521-987
2: र मोबाइल नम्बर 98550-13956।
3: रेडियो भेरी एफएम।